इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: धड़कन धड़कन, Radio Chennai.

अस्सलाम वालेकुम अदब एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चनार और लो हाजिर है और जेजूस लेकर शो व्हाट्सअप।

0: हाय, मैं हूँ आरजे रीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में, और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन में हूं जॉक्स ज्यूस। हाँ, इस धड़कन को धड़काते हैं आप, सो मेरी जान से रहक धड़काते रहो।

0: Kom här, ja.
1: Radio Chennai, Radio Radio Chennai. Weather update, weather update.
2: रेडियो की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे मजेदार शो वसवर वसव शो में ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चिनार रेडियो रेडियो चिनार वेदर अपडेट वेदर अपडेट।
2: जी हाँ, आज का मौसम कैसा होगा? जैसा आपने सोचा वैसा होगा। बॉज मामा आज वेदरुक ड्रामा
1: रेडियो चिनार वेदर अपडेट वेदर अपडेट।
2: आज मौसम बड़ा बेमिसाल है, बड़ा कमाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा जवाल, मतलब क्या कहूँ मैं। इतना आसम मौसम, इतने दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी, फिलहाल कशिर वन मजे मज दो सुबह दो शाम रूद कतरन पे इंसान दिल तो ठंड ग जमीन गोस्ती। बट पॉइंट इसके आने वाले दिनों में एवं बारिशें बरस सकती हैं और बारिशें जो है बरसेंगी, आज भी बरसेंगी। आज मोस्टली क्लाउडी होने वाला है आज का मौसम और आज का टेम्परेचर होने वाला ऑसम, क्योंकि मैक्सिमम रहेगा महज 22 डिग्री सेल्सियस फॉर टुडे। यू इंडेक्स अभी वीक पर है, ह्यूमिडिटी 78%, विंड स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:20 पर, आज का सनसेट होगा 7:45 पर। जी हाँ, मेघा तो बरसने वाली है, लेकिन आप प्यार कब बरसा रहे हैं? अपना प्यार हम तक पहुँचाए, हमें बताए क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी। नन्ना नहीं करनी, हाँ हाँ भरनी है, हम ही भरते हुए अपनी मैसेज अपने नाम पते के साथ हमें जरूर भेजे। 9999904 इज द नंबर। नाम 9904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। मैं हूँ जॉक्स, मस्तार शो वॉसअप, मेरी जान दिल का दरा।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Dios. Dios. Dios. Dios.
1: और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। आज व्हाट्सएप शो में हम बात कर रहे हैं इंडियन एंशिएंट हीरोज की। जी हाँ, ऐसे हीरोज जिन्होंने अपना नाम तो बनाया, साथ ही साथ इतिहास रच दिया, और इतिहास ऐसा कि आज भी उनके बारे में जिक्र होता है।
0: Just.

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: अच्छा

Thank you.

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज। जी हाँ, जरा सा इंतजार देते रहे प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काओ मेरे यार। जॉक्सिस के साथ मजेदार शो व्हाट्सअप से रहा धड़काते रहो।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

it's Vedhar Chediva, only on Radio Channel 90.4 FM.

रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, ढेर सारी बातें, मस्ती मजाक, फन, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। I'm super duper excited, Saturday boss, Saturday, हर कोई करता है, employee क्या हर एक बच्चा, यानी कि हर एक इंसान को खुशी होती है Saturday की, क्योंकि plans execute करने का time आता है और एक ही तो छुट्टी मिलती है कि employee करो कैसे खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और ये हाल सबका है, यानी कि मैक्सिमम लोग ना इस चीज़ से गुजरते हैं। और फिर यही है कि मंडे क्यों आओगे, मतलब मंडे तो आनी आनी है, बट ये है कि संडे की खुशी ना अभी दुगना कर सकते हैं, वीकेंड है, सैटरडे है, तो एंजॉय कीजिए और बताइए मुझे कैसे हैं आपके हालात, जज्बात और ख्याल।

देखिए मुंबई दिल्ली का तो नहीं बता सकते, लेकिन कश्मीर की लड़कियां जो है ना अलग तरह की है, और डिफरेंट सिचुएशंस है, डिफरेंट ओपिनियंस है, और हमारे पास तो उनके पास बहुत सारे जवाब और सॉल्यूशंस है। फिदा तो है दिल ये कि आपके साथ ढेर सारी बातें करनी, अभी तो शुरुआत ही हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, गुफ्तगू हो रही है क्योंकि इस बार इट्स मैं और तू। Back to back songs only on Radio Chennai 90.4 FM. आप सुन रहे हैं hottest frequency of Kashmir Radio Chennai 90.4 FM. हर दिल की धड़कन तो मेरी दोस्त हक से धड़का।

Beats on repeat, show Chunar Beats, I've enjoyed it, only on Radio Chunar 90.4 FM. These are the things and we are talking about National Happy of Jammu and Kashmir. बोथ साइड से आया ट्रैफिक को अलो किया जा रहा है कि आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं. बी केयरफुल, बी कॉशियस, थोड़ा मौसम में गड़बड़ी हो जाती है तो हड़बड़ी हमने नहीं करनी है. ट्रैफिक पुलिस के जानिब से जो गाइडलाइंस हमें दी जाती है और ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो उसके मुताबिक ही हम अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन जहाँ भी हमने जाना है वो प्लान बनाए. और स्पेशली इस रूट पर हमारे लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हम कहीं स्टक ना हो जाए, क्योंकि बीच बीच में कई कई जगहें हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं कभी

कभी वो चीज़ें हो ही जाती है कि सामना करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, हमने रुकना पड़ता है बहुत टाइम के लिए और फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि भाई क्यों ही ऐसा हो गया। सो वो चीज़ ना, और उस चीज़ के लिए हमने ऑलरेडी चेक करना पड़ता है और उसके मुताबिक ही अपना प्लान एक्सिक्यूट करना पड़ता है। वी केयर फॉर यू, वी मीन इट, एंड ज़रूरी है कि हम भी आप तक पहुँचाएँ सही जानकारी। एंड वी आर ट्राइंग कि आप अपना जो ट्रैवल है वो बहुत ही खूबसूरती से आप स्मूथली उसे तय करें। एंड ज़रूरी है कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाने का मतलब ही कुछ अलग है, यानी कि एक पॉजिटिव मैसेज और अपनी जान, 100 लोगों की जान और एक सही मैसेज जाना इज़ वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी और हमें इसे बखूबी निभाना है। तो बी कॉशियस, बी केयरफुल, एंजॉय कीजिए। अब आपने गलत जगह पे ओवरटेक करेंगे तो नॉट फेयर हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि आपने फिर फाइन भरना पड़ेगा, और हम वो नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं आप आराम से अपना ट्रैवल कंप्लीट करें। ये आप किस रूट से जा रहे हो, 200 स्पीड वहाँ पे चॉइस है या नहीं, ये तो हम नहीं आप तय करेंगे, क्योंकि आपकी जान आपके लिए कितनी कीमती है ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। आप भी शो कैसा बन सकते हैं 8999904904। थैंक्स, व्हाट्सएप कीजिए शो चिनार वीज कैसा बन जाए।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर। और मनबू जो खबर विस्तार सान की क्या है खबरें और किन में बात करने जा रहे हैं।
1: खबर ऑनलाइन विस्तार जी,
2: खबर

0: Macit.
1: Diva.
0: Haber online.
2: Aaj ki khabar. Aaj ki khabar.
0: जी खबर ऑनलाइन लेकर तो मैं हाजिर हो गई, और जब भी बात होती है चटपटी खबरों की तो सबसे पहले तो मैं ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं खुद ही हो जाती हूँ एक्साइटेड। मेरी पूरी वाइब भी है, ट्राई भी है, और उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। अब खबर ऑनलाइन में

आज हम बात करने जा रही अक्षय कुमार जी हैं, क्या रूपन वो तो मैं नहीं कह सकती, बट हाँ रूपा की बात नहीं हो रही, कटरीना जी की बात हो रही है, क्योंकि कटरीना को काफी मिस करते हुए नजर आए हैं वेलकम टू द जंगल मूवी में। यानी कि एक इंटरव्यू के टाइम उनसे पूछा गया कि आपने ये लाइन क्यों बोली है, एक ऊंचा लमकत जो फॉरएवर वाला अभी वर्जन आया है, एक ऊंचा लमकत, सो दैट द थिंग कि उस सॉन्ग के एंड में दिशा पाटनी एंड वो एक साथ मिलके बोलते हैं वी मिस यू कटरीना। अब देखिए कटरीना को कोई बीट नहीं कर सकता, इस सॉन्ग की बात करें तो एक अलग ही फीवर था एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कटरीना। अब इट्स नेसेसरी कि उन्होंने तो मिस किया है उन्हें काफ़ी ज़्यादा, उन्हें बोला कि मैं सच में कटरीना को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, और ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये मैंने खुद से बोला, जैसे कि उनके कुछ वर्ड्स जो वो खुद बोलते हैं कि वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट होते हैं, और ऑफ स्क्रिप्ट उनका यही होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है और वो वायरल ही होता है, और अभी भी उनका यही है कि वो कटरीना को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिशा पाटनी को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि वो तो चॉइस भी नहीं है, और ये तो अक्षय कुमार खुद ही वहां पे बोल रहे हैं कि नहीं जी मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। अब ट्रोलर्स का काम है ट्रोल करना, लोग हैं फैंस, और फैंस तो दिशा पाटनी की भी है, और वो कह रहे हैं कि एकदम परफेक्ट चॉइस। अब दिशा पाटनी है इतनी सुंदर और काफी देर तक खुद को मेंटेन करके रखा है, बट आप मुझे बताइए क्या दिशा पाटनी ने जस्टिस किया है सॉन्ग के साथ, या आप स्टिल मिस कर रहे हो कटरीना को इस सॉन्ग में? मुझे बताइए, शो का हिस्सा बन जाइए 88.9904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, और शो चुनाव रीड्स का हिस्सा बन जाइए।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट

0: we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

बीट्स ऑन रिपीट, शो चुनाव रिपीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. देख सारी बातें हम कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. ज़रूरी भी है कि जब हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो आज ऐसे इनिशिएटिव्स भी उठाए जा रहे हैं जहां पर ये तय किया जा रहा है कि जो मासूम बच्चे हैं, बच्चे जिनका हक है एजुकेशन, जिनका हक है उनकी छोटी उम्र में उनको सही रास्ता दिखाना, वहाँ पर जहाँ पर वो एक्सप्लॉइट होते हैं या बहुत सारे कारण होते हैं मजबूरन उन्हें जो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर का वो शिकार होते हैं. इस चीज़ पर जितना काम हुआ है हमारे देश में भी, अभी अगर हम देखें तो सरकार की जानिब से इतने इनिशिएटिव्स लिए गए या फिर इस चीज़ पर अभी बात हो रही है पूरी दुनिया में, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल बात है. And we are talking about theme of World Day Against Child Labor 2026. It's Red Card to Child Labor and also Fair Play to Children, Decent Work for Adults. So what is Fair Play for Children? It's advocating for children's fundamental rights to education. Obviously, we have to talk about ki children ka jo fundamental right hai, jo unhe hak diya gaya, jo unka hak hai ki wo अपनी कम उम्र जो है उनकी, उसमें उनका एजुकेशन का हक है, उन्हें पढ़ना ज़रूरी है और उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. कि कभी कभार हम किसी मजबूरन या फिर हमें कोई ऐसे वो कह सकते हैं कि गलत रास्ता दिखाना हमें कोई कुछ लोग चाहते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारा ये राइट है कि हमें पता हो कि जो बच्चे एक्सप्लॉयट हो रहे हैं हम उनके लिए बात कर सकते हैं, या बच्चे जो जिनको इस बारे में पता हो या फिर हम बच्चों के काम आ सकते हैं. सो दिस इज़ अ फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट. सो इट एम्फेसिस जो हमारा हम प्रोवाइड करते हैं एडुकेट लिवलीहुड फॉर वेज फॉर एडल्ट रेस्क्यू फैमिलीज और जो चिल्ड्रन होता है ओवरऑल अगर हम देखें तो वी हैव टू टेक ए ग्लोबल एक्शन. सो वी हैव टू मेक श्योर कि एक सोशल चेंज आए हमारी सोसाइटी में, चेंज आए, स्ट्रॉन्गर लॉ, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन मिले फैमिली को, बच्चों को, सो दैट वो भी अपनी लाइफ जी पाए. और जो हमारा कानून है, जो हमारा लॉ है, जो वो कहता है कि बच्चों के लिए ये चीज़ें है हक, एक इंसान हो और इंसान को जीने का हक है, और कभी कभार ये चीज़ जो हमसे छिनी जाती है कुछ लोगों के कारण, सो हमारा गवर्नमेंट हो, हमारा लॉ हो या पूरी दुनिया में भी इस चीज़ पर बात हो रही है कि हर एक बच्चे को एजुकेशन का हक है. And we are talking about it. और थीम भी बहुत ही अमेजिंग है इस साल का. आप मुझे बताइए कि चाइल्ड लेबर के बारे में अगर हम ओवरऑल देखिए कितना चेंज आया हमारी कंट्री में भी. पहले के दौर से अगर हम देखें तो पहले ज़माने में बहुत चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी आज से, क्योंकि इट्स 21st ऑफ सेंचुरी एंड हम देख रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें तो चिल्ड्रन अडल्ट्स, ये ओवरऑल अभी अगर हम देखें तो कुछ चेंज हुई है. लेकिन स्टिल एक हम कह सकते हैं एक तबका ऐसा भी है हमारी सोसाइटी में, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्टिल इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और स्टिल वो इस चीज़ को नहीं मानते, बट उनको नहीं पता है कि लॉ वो लॉ से बढ़कर नहीं है और लॉ सबके लिए, उन्हें वो चीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी. आप मुझे बताइए शो कैसा बन जाइए, 8999 0494 WhatsApp कीजिए, शो चुनाव बीच कैसा बन जाइए.

Ta-dum, ta-dum, ta-ta-dum.

Jeremy. Chinar Beats ve Darje Diva on Radio Chinar 90.4 FM.

और मेरे नाम तो ये है कि मैं कह सकती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और ढेर सारी बात, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और एक्स्ट्रा टाइम में हम ढेर सारी बात, और कितना टाइम है वो मैं थोड़ा सा सरप्राइज रख लेती हूँ और बताऊँगी कब तक हूँ आपके साथ। फिलहाल के लिए आपके पास मौका है, चौका मार लीजिए, अपना फेवरेट ट्रैक सुनने का मौका, ढाई से लेकर आप बराबर ढाई तक, जी हाँ डेढ़ से लेकर ढाई बजे तक, ऐसी हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं आपने करनी है। टाइम बता दूँ फिर, डेढ़ से लेकर ढाई बजे तक आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे। 8899904904 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। तो जल्दी से शो कैसे बन जाए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड की शुरुआत हो चुकी है।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
1: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Chinar Beats ve Darche Diva only on Radio Chinar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: दिमाग।
1: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी

0: ये जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harjeet Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो।

Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4 एफएम।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें।

0: ये चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: José.
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4
1: एफएम।

0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: モニーカ
1: ー！वो आ गया, देखो, देखो वो आ गया।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात
0: चुप।
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना
2: सा सारे ग, गा, गा, मा, पा, पा, मा, गा, गा, मा, पा।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना ब...

0: मचाऊंगी शोर, बचाओ ओ मुर्गे, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय।

हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, यान यान यान प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।